0: पांडे जी, क्या तू साला लग पाए हो यार?
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए,
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: JBCO Films लेके आए में एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हाथ आज।
5: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
6: मैं उठों भी मुड़ के हूँ जितों कोई नहीं मुड़ के होगा।
3: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
5: हुन वेखना ना भुल्यो, 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।
7: ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।
1: अखियों से हाय हाय को

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
3: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन मसला दा मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
4: अरे बोलो पप्पू दे पापा,
5: इस 8 मई नू सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।

0: are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji. Stay tuned.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग

0: ते नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। 10 की

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
5: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
6: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
5: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
5: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
6: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
7: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
8: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd.
9: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
10: जवाकां दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
11: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
12: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वध दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
11: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
12: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
13: आज वापस हिंदी उर्दू में आ रहे हैं, एक्चुअली हिंदी भी नहीं उर्दू
14: जी।
13: नज़्म है ये औरत कैफी आजमी की। एक्चुअली ये उस टाइम की बात है जब, इतने साल पुरानी बात है, जब ये रूल ही था कि औरत का सिर्फ काम है वो घर में बैठे रसोई संभाले, बच्चों की देखभाल करे, घर की देखभाल करे, और जो आदमी है वो बाहर जाए, पैसा कमाए, संघर्ष करे। ये उस टाइम पे लिखी हुई नज़्म है, उठ मेरी जान, है ना। अब आप सोचोगे कि ये एक रोमांटिक या कोई औरत की तारीफ वाली नज़्म है या उसकी सजावटी गुड़िया टाइप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक्चुअली हकीकत, मतलब प्रैक्टिकल नज़्म कह सकते हो, कि उस जमाने में जब एक मतलब औरत को कहा जाता था कि ये सिर्फ सजावटी गुड़िया है, उस टाइम पे जो कैफी आजमी थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये आम शख्सियत है, इसका मतलब ये सेम ही है जैसे हम हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के आसपास लिखी हुई ये नज़्म थी। वो ऐसा दौर था रंजोत जी जब बहुत सीरियस टाइम चल रहा था, है ना, वॉर का टाइम था, सब तरफ लड़ाई झगड़े, है ना, स्ट्रेस बहुत था। तो हर एक कवि, हर एक पोएट, हर एक शायर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी लिखत लिख रहा था कि उस टाइम पे अगर हम रोमांस की बात करें, हम प्यार की बात करें, मोहब्बत की, या एक औरत की बात करें, तो बेईमानी होगी। तो इसलिए उस टाइम पे हर एक कोई काफी सीरियस शायरियां भी पोइट्स उस तरीके की लिख रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि चल रही थी। इसलिए जो फैज है उन्होंने भी एक, आपने सुना होगा ये लाइन, मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मेरे महबूब ना मांग, क्योंकि उस टाइम ऐसा टाइम था ना कि अब मैं वैसा नहीं हो सकता, तो क्या ये फैज ने ये लिखी थी, लेकिन उस टाइम पे कैफी आजमी का नजरिया अलग ही था. वो औरत को कोई छोटा नहीं समझते थे और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं समझते थे कि मैं एक नज्म लिख दूंगा तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वॉर में नहीं जाओगे या लड़ोगे नहीं. वो बल्कि औरत को कमजोरी नहीं ताकत मानते थे. तो उसी पर उन्होंने लिखा था, सुनिएगा इस नज्म में. और बेसिकली एक 21 साल की लड़की के लिए लिखा था. और उस टाइम पे जितनी भी औरतें थी ना, तो सबकी एक मतलब एक मेंटालिटी चेंज हो गई थी. जैसे हम चाइल्ड केयर की भी बात कर रहे थे ना कि वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे था कि औरतों को भी बाहर निकाला था कि तुम भी जाओ काम पे. तो उस वो भी एक फपती है ये चीज इस पे. तो ये कुछ ऐसे है. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. कल भी माहौल में लर्जा शर्रे जंग है आज. यानी वक्त के सीने में जंग की चिंगारियां चल रही हैं. ठीक है. हौसले वक्त के और जिस्ट के यक रंग है आज. जिंदगी यानी जिंदगी और वक्त दोनों के हौसले एक जैसे हैं. अब गीनों में तपन वलवलाए संग है आज. यानी काश के प्यालों में पत्थरों की उम्मीदें धड़क रही हैं. उम्मीदें धड़क रही हैं क्योंकि टाइम इस तरीके का है कि हर एक को एक उम्मीद है कि कुछ तो अच्छा हो जाए. हुस्न और इश्क हम आवाज हो हम अंग है आज. यानी आज हुस्न और इश्क एक दूसरे से ही आवाज मिला रहे हैं. जिसमें जलता हूं उसी आग में जलना है तुझे आज. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे जंग में जाना है ना, पर मैं तुझे छोड़ के क्यों जाऊं. तू भी उठ, तू भी मेरे साथ चल. दोनों साथ में जंग लड़ते हैं, तू क्यों भला घर में बैठ के मेरा इंतजार करे और मैं जंग लड़ूं. आज चल अपन दोनों साथ में चलते हैं, दोनों साथ में जंग लड़ते हैं. तू की बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है. पांव जिस राह में रखती है फिसल जाती है. बन के सीमाब हर एक जर्फ में ढल जाती है. तुझे जिस भी बर्तन में ढाल दो तो वैसी ही बन जाती है. तू पानी की तरह है या कह लो मरकरी की तरह है, जहां भी जिस तरीके से ढालो तू ढल जाती है. तो वो और क्या चीज है, तू अगर सोचेगी तो तू लड़ भी सकती है.
14: कर लड़ सकनी, उत्थे भी लड़ लेंगे.
13: कह सकते हो. तू की बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है. पांव जिस राह में रखती है फिसल जाती है. बन के सीमाब हर एक जर्फ में ढल जाती है. जिस्ट के आहानी सांचे में भी ढलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. ये जो जिंदगी का लोहे का सांचा है ना, उसमें भी तू ढल सकती है. तो चल मेरे साथ, मेरे साथ चलना है तुझे. जिंदगी जिंदगी जेहद में है, सब्र के काबू में नहीं. यानी जिंदगी लड़ने का नाम है, चुपचाप बैठने का नाम नहीं. जिंदगी जिंदगी जेहद में है, सब्र के काबू में नहीं. नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं. उड़ने खुले में है, निखत खमे गेसू में नहीं. जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं. उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए. फर्ज का भेस बदलती है कजा तेरे लिए. यानी इस तुझे दुनिया ने इस कदर मैनिपुलेट कर दिया है कि तू एक चिता में जलने को भी तैयार है. वो टाइम था ना कि चिता में भी जल जाते थे, अगर पति की मृत्यु हो गई तो बीवी भी उसके साथ चिता में जल जाती थी. इस तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ था. तो उसमें बात की है उन्होंने, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए. फर्ज का भेस बदलती है कजा तेरे लिए. कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए. जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए. रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे. रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं. मतलब इतिहास ने अभी तक तेरी जो कीमत है वो जानी ही नहीं, वो समझी ही नहीं है कि तू किस काबिल है, है ना, किस कितनी कैपेसिटी है तेरे अंदर. तुझ में शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी ही नहीं. तेरे अंदर आग भी है, अंगारे भी हैं, बस आंसू नहीं है अकेले सिर्फ तेरे अंदर. तेरे अंदर आग भी है, अंगारे भी हैं. कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उनवाव बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, तू फलातून ओ अरस्तू है तू जहरा पर भी।
14: ये तो मतलब उठन नहीं रही हो।
13: हाँ मतलब कितना फोर्स कर रहा है बेचारा, थोड़ा ही रहेगा बस। मतलब तू प्लूटो भी है। एक ही पैराग्राफ रहेंगे।
14: बेटा सौखा नहीं थोड़ा।
13: हाँ तो कितना पहले एक सोसाइटी को भी तो करना ना कि घर की औरतें जब वो इतना इस तरीके का टाइम था कि ऊंची आवाज में बोलना भी अलाउ नहीं था, मतलब एक लेवल पे बैठना भी अलाउ नहीं था, मर्द अगर बैठा है औरत जमीन पे बैठी है, कपड़े भी वो अपनी पसंद की नहीं पहन सकती है, मतलब अगर आदमी नहीं रहा तो सिर्फ व्हाइट कपड़े पहने, वो उस सोसाइटी की बात कर रहा है, तो इसीलिए उसको इतने फोर्सफुली वर्ड्स यूज करने पड़ रहे तो
14: उठ दी।
13: चलो खत्म ही कर देते एंड में, उठ
14: नहीं,
13: मेरी
14: नहीं,
13: थोड़ा से
14: पता तो लगे कभी कभी जान लगी है
13: मेरी भी लग रही है। क्या है यार हम तो यार
14: जनानी नु तो कहते
13: नहीं पर
14: कहते वांडे खड़ना सौखा नहीं होता तो जंग ते ले
13: क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम ही ऐसा था ना उस टाइम के, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो बड़ा सीरियस माहौल था। आज हम हंस रहे भले
14: मैं लगे ना जिदा ना होली होली जी कपड़े कटने लगे
13: पैक पैक कर रही है।
14: अच्छा
13: मेरे से तो माहौल ही नहीं बन रहा हूँ।
14: चलो आदमी साहब करो ट्राई, करो ट्राई।
13: मैं देख रही थी मैं खत्म हुई कि
14: नहीं हूँ, मनु तो फिर खत्म करो।
13: नहीं
14: मैंने तो लगता उन्हें खीर
13: नहीं नहीं नहीं एंड में
14: मैं नहीं लगता नहीं मनना जर फिर सुना लो तो ही चलो कोई
13: चलो मेरा एंड का पैराग्राफ
14: नहीं नहीं नहीं नहीं पता तो लगे
13: उन तीन पैराग्राफ में
14: कितनी कोखी मन्नी है पता तो लगे।
13: चलो मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक की संभालना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिस आग में जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे।
14: अच्छा तो मतलब बैठी ही हो
13: टीन थोड़ी है ना
14: अबे लो मन्नी तो नहीं फिर भी ना गई तो नहीं नाल
13: ये मतलब वो शायरी उसी टाइम दी है ना कि जो एक लेडी नू किस वे च रखा जाता सीगा कि एक मैनू लगता कि कह लो कि पूरा मतलब मर्द प्रधान समाज सीगा अज भी है जेड़ा भावे कि नहीं आपा कह लिए कि एट दी एंड ते सब कुछ सब तो हेड सोसाइटी दे विच मर्द नू ही मन्या जांदा है ना ते ओ उस टाइम पीरियड च इन्होंने लिखिया सीगा कि एक जेड़ी औरत है ओ सिर्फ एक खिलौना नहीं है, एक सजावटी समान नहीं है, या एक सिर्फ ओनू घर दे विच नहीं रखना, ओदे अंदर होर भी बहुत सारी चीजें है, ओ वॉर भी लड़ सकती है, ओ कुछ भी कर सकती है एट दी एंड, ए इहदा मेन मकसद है। ते शबाना आजमी दे पापा है कैफी आजमी
14: जी, माफी मांग सकते हैं बाकी कर सकते हैं। चलो आप शुक्र साहब तुसी सुना ही लो फिर आप ब्रेक ते जाने जी तो बाद फिर जी, जी, फिर आप आके कर लेने
13: ਅਖੀਰ
14: ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚ ਨੀ ਚੜਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੰਗ ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਿੰਗ ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀਰ।
15: ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਨੀ ਵੇ
14: ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨੀ ਅਕਲ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ।
13: ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਕਹੋਗੀ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਾ ਤਾ।
14: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨੀ ਕੀਤਾ।
13: ਆਪਣੇ
14: ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ।
15: ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ।
14: ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਬਰੂਬਰੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ
13: ਨਹੀਂ ਇਹ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ
14: ਨਿਆਣੇ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਘਰ ਪਿੱਛੋਂ,
13: ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 4:30 ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਤੇ, ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚੱਲੀ
14: ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ

0: हिसाब बिगाड़ दिया।
1: ओह
0: वाह, थैंक यू अमृत जी, बहुत सोहना। तो नवी जी कहते कि सिप सिप सिप सिप सिप बुरबरा उबी साहब एक ही चीज आ गई मतलब बर्थडे हैप्पी बर्थडे ना
1: बुरबरा कहना सी बुरबरा
0: सिप सिप बुरबरा
1: अच्छा
0: उन्हों का कोई होना कोड यार दोस्त ने वो। तो करमजीत जी धन्यवाद तुहाडा कहिंदे कि सत श्री अकाल ते बेस्ट हो गया ते नाले हस रहे ने थैंक यू मेहरबानी। अच्छा अज कुछ चंगा होया होवे तुहाडे नाल ते वो तुसीं दस सकदे हो। एक जिहड़ा चंगा दुनिया दे विच होया वा वो मैं सांझा कर देना फिर आपां ब्रेक ते जाने फिर तुसीं वी जरूर सोचो भी की तुहाडे नाल चंगा होया। बहुत सारे ना इदां दे इलाके ने दुनिया दे विच जिथे पानी नहीं पहुँच पाउंदा जां रेगिस्तान ने जिथे पानी नहीं हुंदा जां पहलां तक नहीं हुंदा सी हुण उत्थे एक आस उम्मीद की किरण जागी है कि उन्हां इलाकियां दे विच भी पानी हो सकूगा बिना किसी बिजली दे बिना किसी बैटरी दे। एक ऐसा उपकरण तैयार किया गया प्रोफेसर उमर यागी इन्हां दा नाम है। ये प्रोफेसर साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया दे बर्कले ते कैमिस्ट्री दे प्रोफेसर ने उत्थे ते उन्होंने एक यंत्र इदां दा तैयार किया वा जिहदे नाल हुण दुनिया भर दे विच इन्हां नूं सन्मानित किया जा रहा। आपां जे वैसे पिछे झाती मारीए ते इह कोई मतलब खोज हुण नहीं हुई, एक खोज की शुरुआत हुई सी 1990 प्रोफेसर उमर यागी जिहड़े ने 1990 दहाके के अखीरी समय के पहली बार इन्हां ने मैटल ऑरगैनिक फ्रेमवर्क यानी कि MOF इनू कहिंदे आ मैटल ऑरगैनिक फ्रेमवर्क की इन्हां ने खोज की ही उस समय। सो उस समय इसका मुख्य मकसद वैसे होर सी कुछ इसका मकसद यह सी भी गैसा जिवें कि हाइड्रोजन ते कार्बन हाइड्रोक्साइड आ उन्हूं स्टोर करन दे लिए कोई कर रहे परीक्षण। तो उस तो बाद फिर पानी कढ़न का जिहड़ा पहला सफल प्रयोग होया 2017 दे विच होया है। उस तो बाद फिर इन्हां दा ध्यान इधरले पासे नूं लग गया। सो उस तो बाद फिर जिहड़ा पहला प्रयोग इन्हां दा उहदे विच इह पाया गया कि 20-30% नमी वाली जिहड़ी हवा आ उहदे विचों पानी कढ़िया जा सकदा पर इस तो घट वाली दे विचों वी हुण इन्हां ने कढ विखाया। खैर 2018 दे विच तां फिर रेगिस्तान दे विच खड़ के ते परीक्षण किया गया अमेरिका दे जड़ा एरिजोना रेगिस्तान है उहदे विच ओ थां जिथे बिल्कुल पानी जड़ा औखा ही पहुँचता ही जां हवा च नमी बहुत घट ही उस जगह दे उत्ते दा जाके परीक्षण किया तो वह सफल हो गया। फिर इहदे उत्ते इदां विश्वास नहीं जताया जा सकता। फिर इहनू होर फरदर इहनू चैक किया गया कि की ये 10 गुणा जिथे 10% सिर्फ पानी की नमी आ हवा दे विच की उत्थे काम करदा। सो पिछले कुछ सालों तो ये टैक्नोलॉजी नू जिहड़ा वा फिर सस्ता करन दे उत्ते भी प्रयोग किए गए क्योंकि ये टैक्नोलॉजी काफ़ी महंगी सी। 2021-24 के दरम्यान ये सारे जिहड़े परीक्षण किए गए पहलां दे नालों 10 गुणा जिहड़ा होर वधेरे इहनू जिहड़ा स्पंजी बनाया गया यानी कि होर वध जिहड़ा पानी दे विचों सॉरी पानी नमी दे विचों ये सोख सके सुकी जिथे कुछ नहीं उतों भी। तो हूँ इस टाइम के उत्ते आपां शेयर कर रहे हैं हूँ साढ़े लिए सोहनी खबर तो है क्योंकि इस समय यह टैक्नोलॉजी जी हूँ सारे प्रयोग हो गए तो बाहर आ गई है हूँ मास प्रोडक्शन के लिए चली गई है इस करके खबर फिर दोबारा चर्चा के। सो इस खोज की महत्ता यह है कि लगभग दुनिया भर के आप कहे सानू जिहड़ा पानी सौखा मिलता वा जां आपां नूं कदी किल्लत नहीं आई पर सानू उन्हां लोकां दा बारे सोचना चाहिए। दुनिया की एक तिहाई आबादी है जिन्हां जिहड़े पानी की किल्लत वाले इलाकों च रहिंदे आ हमेशा ही जिन्हां नूं करोड़ां रुपया इसे पासे खर्चना पैंदा वा करोड़ां लीटर पानी की नमी जिहड़ी आ उन्हां नूं बना के रखनी पैंदी आ। सो इस खोज दे नाल ओह एक तिहाई आबादी तक पानी हुण पहुँच जूगा। हुण इह काम किहड़े तरीके दे नाल करदा वा जे इहनूं कहिंदे कि रात दे समय हवा दे विच इहनूं रख दिता जाता तो उस तो बाद पानी के जेडे काने हवा के उन्होंने खिच के एक स्पंज की तरह जिदा आप भांडे धोने वाला स्पंज वरतने आप जमा कर लेंदा। फिर उस तो बाद दिन के समय जो सूरज निकलता वा क्यों ऑफकोर्स उन्होंने थावान उत्ते सूरज जोड़ा वो ज़्यादा चमकता ज़्यादा गर्मी होंगी है तो वो गर्मी के नाल जे MOF आने अंदर जमा होया पानी जोड़ा वा वह भाफ बना के बाहर कढ़ देंगे। तो उस तो बाद फिर अगली प्रक्रिया इदा है कि इनू एक कंडेंसर दे राही फिर दोबारा तो पानी दे विच तब्दील किया जाता तो फिर उन्हों जड़ा वा वो पीण दे काबल हो जाता ये नाल दी नाल वो फिल्टर भी करता वा उस चीज़ को। हुण इहदी वड्डी गल इह आ भी इहदे लई बिजली भी नहीं चाहिए इहदे लई कोई बैटरी भी नहीं चाहिए ये सूरज की रोशनी दे उत्ते ही काम करता। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10-20% ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਣੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਣੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਜੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਕਬੀਲੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ
1: ਜੀ।
0: ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੱਦ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਖਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
1: ਸੋ ਇਹ ਸੀ
0: ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM 24/7 ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਿਡਨੀ ਕਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
3: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
4: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
5: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: करें हम कि जिससे मतलब उसकी वो मेमोरी याद आए और वो उसे याद है कि इन दोनों की शादी हुई थी और इनका प्यार था. तो मारू ने और पुगल के लोगों ने मिलके एक ढोली लिया है ना, ढोल बजाने वाला, और उस ढोली को उनके महल के जस्ट सामने खड़ा कर दिया और ढोल बजा बजा के वो गाना गाने लगा है ना. गाना यही गा रहा था कि मारू की आवाज, दिल की आवाज गा रहा था कि पधारो मारे देश केसरिया बालम. मतलब जब ये दस रही ना कि मैं बावरी हो गई तेरी याद में, बड़ा वो पूरा गाना उसमें यही इनकी याद की पूरी जो बचपन से छोटी छोटी यादें उस गाने में भर के मतलब वो ढोली ने सुनाई. फिर एकदम से वो सुनते सुनते फिर वो ढोला भी आया और उसको याद आया कि हाँ कि ऐसी कोई कहानी थी. फिर वो जाके उससे मिला. मतलब ये राजस्थान की उन कहानियों में से एक कहानी है कि जिनकी प्रेम कहानी पूरी हुई, क्योंकि अक्सर हम प्रेम कहानियां देखते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होती, हमेशा अधूरी रह जाती है. तो आज भी राजस्थान में कई बड़े बुजुर्ग अगर दुआ भी देते हैं ना नए नवविवाहित जोड़ों को, तो यही बोलते हैं तुम्हारी सदा सुखी रहो, तुम्हारा प्यार ढोला मारू जैसा अमर रहे. अच्छा। तो ये कहानी जुड़ती है
1: हैप्पी एंडिंग वाली,
0: हैप्पी एंडिंग वाली.
1: ओके।
0: पधारो मारे देश अगर आप गाना सुनो तो ये ढोला मारू की कहानी से जुड़ता है.
1: वैसे भी कहते ना जो चलो हूं तो समा बदल गया, पहलियां बचपन च ब्याह होंगे तो उद्दे च कई बार कहानी टाइप लगता, पर कहते हैं कि जो तुम बचपन एक सेध मिल जाती ना, तो मन में एक एक एक पिक्चर मिल जाती, एक अक्स एक नाम मिल जाता वा भी फलाने थानियां तारा जुड़िया ने, जो तीन व्डे होना उस घर जाना वो ब्याह होना, तो एक तरह के नाल सोचा दे उस बंदे इन्ना क ज़्यादा अपना मन चुके होंगे हो भी वह वाकई वो तक ताड़िया गल् पहुँच रही होंगे. तो कई पुरानी जो तुम पढ़ते हो तुम तो उदो तो शायद टैलीपैथी नहीं कुछ होर कहें हो गए जज पर वाकई कहें होंगे ही.
0: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पहले के टाइम में तो इतने ऑप्शंस भी नहीं थे ना, इमोशंस ही थे जो एक दूसरे की फीलिंग एक दूसरे तक पहुँचाते थे.
1: जी इमोशन नहीं है तुहाडे, तुसीं बाकी तुहाडे मन दे विच जे कोई चंगा है तो वह परत के तुहाडे अपने आप ही तुहाडे तक आए ना. जसप्रीत जी कहिंदे ने कि कल मेरे नाल वधिया होया, माफी चाहुंदे जी होर कॉलर आपां नहीं लै पावांगे, हुण आपां मैसेज पढ़ के समाप्ति करदे हां. कहिंदे कल मेरे नाल चंगा होया, एक कुड़ी मेरे कोलों ऑर्डर लैण आई ते उहदे नाल आंटी भी सी ते मन्नत ने उहनां दे नाल बहुत गल्लां कीतियां ते वह कहें कि किते ए ओ मन्नत फतेह तो नहीं जिहड़े रेडियो हाँ जी ते गल करदे आ, ते बहुत सोहना बोलदे आ पंजाबी विच रोज़ रेडियो हाँ जी मैं सुनदी हाँ. थैंक यू जी, बहुत वधिया, थैंक यू. ये तो सानू भी बहुत वधिया लगा. तो सुखविंदर भैन जी की कहिंदे ने ओके कल मेरे नाल कहिंदे, अच्छा नहीं तो इन्हां दे सुखविंदर भैन जी क्या कहते हैं, अच्छा कहिंदे कि सब तो पहला तू मेरी धड़कन नू महसूस किया, सब तो पहला तू मेरी धड़कन नू महसूस किया, मेरे रब रूप नू बिना देखे मैनू प्यार किया, आप दर्द सह के मैनू भी जिंदगी दिती, आप रातां नू जाग के मैनू चैन नाल समाया, मेरे बोलन तो पहला ही मेरी गल नू समझिया, तू मेरा पहला रब ए मां. धन्यवाद जी तुहाडा. ते जसवाल साहब कहिंदे कि भाजी यश जी नू पुछो कि कवाड़ प्रेम दी की कहानियां, आइसक्रीम दियां रेहड़ियां दे उत्ते लिखिया हुंदा वा मेरे करन अर्जुन भी आएंगे नाले ठाकुर तू तो गयो अगली बारी दसांगे तुहानू. थैंक यू भाजी. कहिंदे कि एक रिक्वेस्ट है प्लीज जैसमीन जी आले शो दा पॉडकास्ट पा दिओ. हाँ जी, जां पै चुका होगा जां पै जूगा जी, ते सारा कुछ जिहड़ा वा एक सीक्वेंस दे विच एक लाइनअप हो जांदा वा, उस तो बाद फिर जिदां जिदां जिदी जिदी वारी आउंदी आ वो पई जांदा वा, थोड़ा जिहा वेट कर लो. थैंक यू. कहिंदे माई आई वॉन्ट टू सेंड दैट टू माई फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, ते हिज बिग टाइम बटालवी फैन, वोंट लिसन टू डैट. पर बटालवी जी वाला जो प्रोग्राम है वो आई एम नॉट श्योर जैसमीन जी ने किया कि किया, वो तो अपना प्रीतम रूपाल जी ने किया वा, हो सकता उन्होंने वक्रे तौर पर किया हो, थोड़ा जहा क्लीयर कर लियो पहला तो कि चाहिए वा तुम मतलब बर्थडे विश भी करनी तो मतलब शो. थैंक यू. कहिंदा गला खराब सी ते डॉक्टर कहिंदा गरारे नाल ठीक हो जांदा ते दो दिन तो पाई फिरदा कोई फर्क नहीं पिया, दो दिन तो पाई फिरदा कोई फर्क नहीं पिया, ਆਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਗਰਾਰਾ ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਨ ਓਫਰਡ ਮੀ ਏ ਪਲੇਸ ਫੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੋਰ ਏ ਪਾਰਕ ਕਾਰ ਟੂਡੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਸੀਸ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਰ ਕਾਇੰਡ ਗੈਸਚਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਫਰਾਈਡੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕੌਣ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੈਸਪਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਲਰੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਘੁੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਮੰਡੇ ਹਾਂਜੀ

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
5: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
6: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 20.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: SEO films leke aaye action emotion ate full on entertainment punjabi feature film shera
1: 5 saal baad mudiya shere te mudiya vi kede haath ta
2: starring parmesh verma sonal chauhan yograj singh manav vij ate hor vi ugge kalakar
3: main utthon vi mud ke jithon koi nahi mud ke honga
0: written and directed by sabio sandhu produced by anmol sahni
2: hun vekhna na bhullo 15 mai to tuhade nedle cinema ghar vich shera
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
5: और जो हुकम मेरी सरकार
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
5: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
5: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
6: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
7: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
8: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd.
9: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
10: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
11: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
12: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
11: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
12: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
13: नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब, मैं हां कृष्णन, तुसी सुन रहे हो रेडियो हां जी 1674 AM। तुसी साडे नाल बने पए हो लाइव वखरे वखरे पता नहीं केड़े-केड़े प्लेटफॉर्म्स तों, पर थैंक यू, वेलकम। एंड तुसी जदों भी इस नूं सुनोगे ते मतलब जो भी जिस टाइम ते सुनोगे उस टाइम ते भी सुनने वाले नूं हैलो हाय कैसे हो सब ठीक ठाक मजा में। खैर थोड़े टाइम पहले जी आया ऑस्ट्रेलिया फेडरल बजट 2026 एंड असी क्या कि भाई किस तरह का बजट, तो चैट जीपीटी ने कहा इट्स ग्रेट, तो उस तो अगे कुछ उन्हें बोलिया नहीं। मैं क्या इस दी जानकारी मैं इस तो ज़्यादा हैवीली

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
3: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
4: वॉच अनन्या पांडे एंड लक्ष्य इन चांद मेरा दिल कमिंग ऑन बिग स्क्रीन्स ऑन May 22nd।

0: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा
1: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हाथ ता
2: स्टारिंग परमीश वर्मा सोनल चौहान योगराज सिंह मानव विज अते होर भी उगे कलाकार
3: मैं उठो भी मुड़ के जितों कोई नहीं मुड़ के होगा
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सैवियो संधू प्रोड्यूस्ड बाय अनमोल साहनी
2: हुन वेखना ना भुलियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा
4: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना
5: देखिए प्रजापति पांडे उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में
6: मैं तो अपना गिप्पी गरेवाल सुन रहे हो हां जी रेडियो हां जी।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio. Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
4: स्कूल तो यार होने ही नहीं चाहिए, मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन मसला तो मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
5: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
3: इस 8 मई नू सिनेमा विच रिलीज होने जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
6: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुण सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुणे डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: वे सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: रेडियो हाँ जी 1674 आस करते हैं दिन थोड़ा वधिया जा रहा होएगा चढ़ती कला दे विच होगे चेहरे ते होगी मुस्कुराहट जेकर नहीं ते आओ सब तो पहला चेहरे ते खुशी लेके आइए ते बिल्कुल इस तरह दे नाल इस खुशी नू अपने चेहरे ते बना के रखियो इस मुस्कुराहट नू अपने चेहरे ते सजा के रखियो समा चुका अज दी कहानी दा मीत दा व्याह बड़ी सोहनी कुड़ी दे नाल होया सी उसका नाम सी रमन मीत उन्हूं बहुत प्यार करता है इन्ना प्यार के एक दिन उस प्यार नूं नजर लग गई रमन नूं चमड़ी का रोग हो गया चमड़ी का रोग होने करके दिनों दिन उसकी सुंदरता घटन लग पी हाले शायद इस घर से होर कैर टुटने से एक दिन मीत किसी सफर से निकलिया जब वापस आ रहा सी तां एक्सीडेंट हो गया पता लगा कि उहदियां अखां की रोशनी चले गई है हुण वो वेख नहीं सकता पर हुण भी दोवां दे विच प्यार उन्ना ही सी उन्हां दे विच कोई खास फर्क कोई लभिया भी ना लभ सकदा जिदा जिदा दिन बीतते गए हौली हौली रमन दा रोग होर वधदा गया हौली हौली उहदा चेहरा होर भी विगड़दा गया उहदी खूबसूरती हौली हौली होर घटदी गई पर हुण अन्ने होए मीत नूं कोई फर्क नहीं सी पैंदा उह नहीं सी वेख सकदा लोक कहिंदे शायद इस वजह करके इन्हां दे प्यार च कोई फर्क नहीं आया शायद इस करके इन्हां दा विवाहिक जीवन बड़ा वधिया चली जाण डिया दोवें जणे एक दूसरे नूं उन्ना ही प्यार करदे जिन्ना पहले दिन करते सी जो उन्होंने एक दूसरे को वेख्या सी ते वेखते रह गए समा अगे वध्या बीमारी होर वध गई आखिर एक दिन रमन इस दुनिया तो चली गई उसकी मौत ने मीत नूं वड्डा झटका दिता मीत ने सारे रिवाज पूरे किए जो कुछ भी रीति रिवाज सी वो सारे पूरे करन तो बाद अपने नेड़लियां नूं दस्या कि वह हुण शहर छड्ड के किसी दूसरी जगह जाना चाहुंदा वो इस शहर दे विच इस घर दे विच उन्हां लोकां च नहीं रहना चाहुंदा जिथे उस नूं रमन दी याद आवे वो अपना इरादा पक्का कर चुका रिश्तेदारी दे विचों एक आदमी ने अगे होके कहा अखां तो तेनू दिसदा नहीं किते होर जाके गुजारा किदां करेगा इत्थे अपनियां दे विच रहेगा तो फिर भी कोई तेरी मदद कर दूँ

0: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है,
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न टू बाथ, हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ, 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक। होने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
4: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
5: हाँ जी रेडियो।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जवाकां दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
3: यू आर लिसनिंग
4: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
5: रेडियो हांजी,
3: स्टे ट्यून्ड।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाँ जी 1674 AM।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: $295 डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुणे डायल करो 0406-966-668 or visit shipglobal.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
3: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
4: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd. Chand.

तेनू ओदे नाल मिलाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।

0: ना। यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Hanji Hanji, yoy Hanji Hanji,
4: Hanji Radio.
5: ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਕਮਾਲ, ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ ਧਮਾਲ।
6: ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ।
7: ਅਰੇ ਬੋਲੋ ਪੱਪੂ ਦੇ ਪਾਪਾ।
5: ਇਸ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਵਾਕ, ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ।
8: ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਲੱਕ ਪਾਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੇ ਸਾਥ ਪਕੜੇ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਛੁਡਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
9: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
10: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना,
11: डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ, 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 or visit shipglobal.au।
12: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
13: और जो हुकम मेरी सरकार।
12: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
13: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
12: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
13: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।
14: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
15: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
14: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
15: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
5: हाँ जी सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी। 16-74 ये नहीं है 71-72, ये है 16-74, ये है 16-74। सुनते रहो, सुनते रहो, हाँ जी।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

ब्रोवर्स, वी ब्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हाँ जी AM।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: तेनू ओदे नाल मिलाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।
1: Is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Haji 16748.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.
3: Thank you.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
3: हांजी रेडियो।

0: वे सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।
1: बेबी मेरी हाय हाय कोली मारे अखियों से हाय हाय कोली।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वादा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रव नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आदि गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एकै नाम चवत अगनत अनेकै
0: वेद पुराण सिमर सुधाखर कीने राम नाम एक अखर
1: इनकै जे जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै
0: कांखी एकै दर्श तुहारो नानक गुण संग मोहे उधारो
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हर अंग
1: प्रभु कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होए सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: श्री सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभु कै सिमरन आही जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान प्रभु को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभु को सिमरै सी बेमुहताज प्रभु को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै सी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै सी पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आंदन जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभु कै सिमरन कारज पूरै प्रभु कै सिमरन कबू न जूरै
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभु कै सिमरन नेचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कृपा मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सुतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चले
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कोट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तुहि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: जे मार्ग हो जात कीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परमगत पाइयै
1: छूटत नाही को लख बाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगन जह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन मैं मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हौ मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप होवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइयै साध कै संग
0: जे मार्ग के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को नस जानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तो प्रोघाम ते हर के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ कर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है
1: भग जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कर संत दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेक है
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जो हर नाम जपत कछ नाहे बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के मालिक जीना हर धन जन को आप प्रभु दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पो जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगट नी छपै
1: हर की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तिन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम धियाई है
0: नाम तुल का छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमरत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਕਿਰਿਆ
1: ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਉ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰਥੀ ਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਬੋਰਦਾਨ
0: ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ
1: ਦੇਹੀ

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: थी नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। आपके हम हर बार बताते हैं कि इतने सारे ईमेल्स आते हैं, फोन कॉल आते हैं, और आज इसीलिए हमने तय किया है कि कुछ ऐसे सवाल जो बहुत से दर्शकों के होते हैं और बहुत सारा उसमें ही जवाब मिल सकता है, उन्हें हम चुने और अपने प्रोग्राम में शामिल करें और इन सवालों का जवाब साथ मिलकर तलाशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे हम सफर है ब्रह्मा कुमारी से शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सर शिवानी, इतने सारे सवाल और इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सवाल होते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं हम कि मिलते जुलते सवाल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी वही है, मुश्किलें वही हैं, अड़चने वही हैं, स्ट्रेस उतना ही है, एंगर है, बाकी सारी और चीजें हैं। एक सवाल जो यहाँ पे इन्होंने भेजा है, मुंबई से आया है, और विनय जी ने ये लिखा है, मेल भेजा है, वो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मैरिड मैन और मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन हर बार मुझे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पर बहुत शक करती है। मैं उन्हें इतनी बार समझाने के बाद भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई डू केयर फॉर हर एंड हो ये रहा है कि धीरे धीरे मैं इरिटेट होने लग गया हूँ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ से भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है और आप शायद उन्हें कुछ समझा पाएं, और मैं चाहूंगा कि आप बात करें।
1: वेरी टिपिकल प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जहां दोनों वर्किंग हो गए और दोनों बहुत सारा समय बाहर बिताने लगे, तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम क्रीप अप होने लग गई, क्योंकि हम परिवार के साथ कम समय
0: और बाहर ज्यादा
1: समय बिताने लगे। और एक नॉर्मल भी होता गया कि जहां हम बाहर इतना समय बिताएंगे तो वी विल हैव अ क्लोज फ्रेंड सर्कल देयर, वी विल हैव पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस, बट नाउ इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हमारे जो क्लोज परिवार के जो संबंध है वो और भी एक स्ट्रांग फाउंडेशन पर बेस होते जाएं। तो कहीं ना कहीं इस केस में एक तो जिन्होंने ईमेल लिखा विनय जी ने, ही ऑल्सो हैज टू डू अ लिटिल वर्क, बिकॉज मे भी उन्हें लग रहा है कि सारा काम
0: कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी।
1: क्योंकि ये क्वेश्चन भी जिस तरह से भेजा कि आप मेरी वाइफ को ये समझाइए, तो लेकिन हमारा तो हमेशा मोटो यही रहता था, वी कांट चेंज अदर पीपल, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थिंग्स विल बिकम इजी फॉर हर। मे बी शी डजंट हैव टू मच ऑफ अ डाउट, मे बी आई एम फीलिंग लाइक दैट, बिकॉज कई बार हो सकता है कि अगर मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, या छोटा छोटा जो समटाइम्स मे बी जस्ट आउट ऑफ यू नो कि जैसे इकट्ठे रहते हैं, तो इट्स गुड टू नो अबाउट ईच अदर, इट्स गुड टू नो कि हम क्या कर रहे हैं।

0: डाउट करने का. अब एक्चुअली क्या हो रहा है, वाइफ डाउट कर रही है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हस्बैंड डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं कि ये मुझसे क्यों
1: डाउट कर रही है.
0: यू नो, ये एक एनर्जी है जो क्रिएट हो जाती है. तो मे बी इफ शी हैज नॉट सेड इट डायरेक्टली, तो मे बी डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम देयर मे बी. बिकॉज क्या होता है, जिस वायुमंडल में हम आज हैं, तो हम जब ऑफिस पहुंचते हैं हमारे को ये बातें बहुत कॉमन सुनने में मिलती है. दीज हैव बिकम द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन एवरीवेयर के हस्बैंड का कुछ और
1: वाइफ. इट इरिटेट्स मी सो मच, मुझे कंटिन्यूस इरिटेशन रहती है, मुझे गुस्सा चढ़ने लगता है, मैं उसे चुप हो जाता हूँ, बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू.
0: अब हम जब बात करना बंद कर देंगे तो
1: पनिशमेंट वाला जो फैक्टर
0: है कि एक तो दूसरे को दर्द मिलेगा. अब अगर सपोज एक तो है कि पता, आई हैव टू मेक श्योर कि वाइफ डाउट कर रही है या नहीं. नाउ अगर कर रही है, हाउ डू आई मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शब्दों से नहीं होगी. उन्होंने कहा मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे से वो सही एनर्जी नहीं पहुंच रही है.
1: व्यवहार में लानी पड़ेगी आपको.
0: तो अब जो हम कर रहे हैं वो और ही दूरी ला रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम इरिटेट हो रहे हैं, कि हम बात करना ही बंद कर देते हैं. अब अगर हम बात करना ही बंद कर देंगे तो डाउट और भी
1: ज्यादा
0: बढ़ता जाएगा. Now if I look at her with compassion, right now I'm looking at her with anger. कि ये क्यों डाउट कर रही है.
1: Maybe you know again this thing comes यहाँ पे शिवानी की शायद वो अगर डाउट कर रही है तो वो पेन में है.
0: वो पेन में तो है ही,
1: बिल्कुल
0: बहुत दर्द में है. आप इमेजिन करो ना, दो क्षण के लिए अपने आप को वाइफ की स्थिति में रख के देखो वो कितने दर्द में है. अब इस दर्द में क्या मैं उसको और दर्द दूं? यही तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. पहले हमें हो रहा था गुस्सा, क्यों डाउट कर रही है, जबकि मैं सिंसियर हूं तो क्यों डाउट कर रहे हैं मेरे पर. टू बी सेंट एंगर, एंड एंगर जैसे इन्होंने कहा व्यवहार में भी आने लग गया, थॉट्स में भी नहीं. तो आई हैव टू फील कंपैशन, क्योंकि डाउट कर रही है, मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच टर्मोइल. तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है इसको हमें चेंज करना होगा. तो स्टार्ट गिविंग हर मोर पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी, कि मे बी बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कहीं से मिले होगी, या फ्रेंड्स बहुत ज्यादा उस तरह की बात करते हैं, या उनको अपने ऑफिस में कई ऐसे लोग दिखाई देते होंगे जिन्होंने इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो डाउट बैठ गया. मुझे उस डाउट को फिनिश करने के लिए और भी प्योरिटी और भी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, इफ दैट रिलेशनशिप मैटर्स टू मी. सी दैट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी. अगर रिलेशनशिप मैटर करता है देन इट इज नॉट अबाउट ईगो, कि आप गलत हैं, आप मुझ पर कैसे ये डाउट कर सकते हैं. मेरा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, इस समय ये रिलेशनशिप में दर्द है, मुझे इस दर्द को हील करना है. क्योंकि सामने वाले के अंदर तो इस टाइम ताकत ही नहीं
1: है. डेफिनेटली, बिकॉज ही सेज मैं हर्ट हो रहा हूँ. सो अगेन हमने बात ये की थी कि हर्ट कोई और नहीं कर सकता हमें, हम खुद करते हैं.
0: तो अगर कोई डाउट भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं सिंसियर हूं तो मुझे क्यों हर्ट होना चाहिए. मुझे हर्ट इस बात से होता है कि तुमने मुझे डाउट किया कैसे. यू सी दैट्स ईगो. That's where it gets hurt. But if I understand from her perspective, I will see it's okay. Accept, it's understandable. और जितनी जल्दी हम उसको heal कर देंगे उतनी जल्दी वो trust बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा. हमें लगता है इसने डाउट कर दिया तो इसका मतलब कोई ट्रस्ट
1: हो गया, वो लड़ाई होती है. बहुत सुंदर विनय जी यही कहना चाहेंगे कि प्यार अगर आप करते हैं सचमुच, इफ यू
0: रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए मेरे लिए.
1: अगर वो इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और यू रियली लव योर वाइफ, देन एक्सेप्ट हर. दिस इज व्हाट वी सेड, लविंग समबडी मीन्स एक्सेप्टिंग. और अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं.
0: जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को कोई बीमारी लग जाती है, इट कुड बी एन एक्सीडेंट जिसमें आप फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं, या आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जो ठीक नहीं होती है. हमें बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं दूसरे मेंबर से. मेजोरिटी तो होना चाहिए या होता है कि स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और विद योर फिजिकल हैंडीकैप ऑल्सो आई एक्सेप्ट यू. हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पहले तो ठीक थे लेकिन अब आपका ये हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए. नो, विद द फिजिकल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो विद अ लिटिल इमोशनल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को. वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन थोड़ा सा हैंडीकैप आ गया, थोड़ी सी चोट लगी है बीच में, तो क्या हम रिजेक्ट कर देंगे? जिसको चोट लगी है उसको ही डांटना शुरू कर देंगे? सिर्फ ये है कि फिजिकल एलिमेंट और फिजिकल हैंडीकैप देखना बहुत इजी लगता है, इट्स इजी, लेकिन इमोशनल एलिमेंट देखना

0: मुश्किल होता है क्योंकि हम खुद ही चोट में बैठ जाते हैं
1: और इमोशनल एलिमेंट में हम दूसरे को दोष देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल. You know, see, we don't take it as an ailment. Yeah. We say you are responsible person.
0: Responsible. And now you have hurt me.
1: Hmm.
0: So now I have the right to hurt you. तो आपने मुझे doubt किया.
1: Emotional ailment actually.
0: यही तो हो रहा है ना. तो वही तो बात हुई थी कि आप भी दर्द में तो मैं भी दर्द में. तो आपने मुझे doubt किया तो अब मैं आपको गुस्सा करूंगा. तो क्या हुआ, आप भी दर्द में, मैं भी दर्द में.
1: Wonderful. That's actually a different way of looking at it. और कहीं ना कहीं आप शायद विनय जी उम्मीद ये कर रहे थे कि हम आपकी वाइफ से बात करना चाहेंगे, लेकिन जरूरी यही है कि बदलना हमें खुद को होगा.
0: हाँ, और ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग जस्ट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग कि ये हर प्रॉब्लम जो हमारी फैमिली में या हमारे कोलीग्स के साथ आ जाता, लुक एट इट एज अ हैंडीकैप, लुक एट इट एज एन इलनेस, डू नॉट लुक एट इट, ये तो है ही ऐसे. मतलब हमें ये समझना होगा, जानबूझकर कोई कुछ नहीं कर रहा होता. कहीं ना कहीं वाइफ के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि वो अपने हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही है. मेजर इनसिक्योरिटी है अंदर, इस कारण से उसको लग रहा है कि आप बाहर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, क्योंकि उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं,
1: कम है, बहुत कम.
0: इतनी कमजोर आत्मा के ऊपर अब और क्या गुस्सा करना. इट्स नॉट राइट.
1: लेकिन
0: इट्स नॉट राइट.
1: बात वही होता है कि हम भी उतने ही कमजोर होते हैं, और वो जब दो कमजोर आत्माएं साथ होती हैं तो फिर परमात्मा.
0: व्हाट इट्स ऑल बिकम अबाउट अंडरस्टैंडिंग. जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो हमें औरों को भी अंडरस्टैंड
1: करना
0: इजी
1: आसान हो जाएगा. वेरी वेरी ब्यूटिफुल सिस्टर शिवानी. और अब एक और मेल हम लेते हैं यहाँ पर. ये एक बच्चे का मेल है, और मजे की बात यह है कि इस प्रोग्राम के दौरान हमें इतने स्टूडेंट्स के और यूथ के मेल आए हैं जो ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं जो उन्हें लगता है कि कहीं नहीं कर पाते. एंड दिस इज अ गर्ल हु इज 14 ईयर ओल्ड. शी सेज माय मदर इज वेरी ब्यूटिफुल. Till some time, I had lot of confidence on her. I was very proud of her. वो एक working woman है और मेरी उनके साथ बहुत अच्छा relationship था. लेकिन धीरे धीरे अब मैं ये देखती हूँ, I've started hating her. Why? Because I find her much more beautiful than me. और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैंने ये देखा, अपनी friend से भी बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत दूर चली गई हूँ. This is a child talking.
0: It just shows कि हमारी इनसिक्योरिटी किस लेवल तक पहुंच गई है. पहले ये होता कि अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, या मेरी सिस्टर या ब्रदर मेरे से ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती. लेकिन पेरेंट्स के साथ इस तरह की चीज फील करना, पहली बात तो हमने यही समझा कि ब्यूटीफुल एक्चुअली मतलब क्या है ना. अभी ये क्यों ये इनसिक्योरिटी आ रही है? इट कुड बी विद मदर, इट कुड बी विद एनीबडी एल्स, इट कुड बी विद फ्रेंड्स. इट इज बिकॉज जो ज्यादा सुंदर है फिजिकली, हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको औरों से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी. और उसको औरों से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती और मुझे नहीं मिलती है, तो मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम इस पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड आई बिलीव कि आप मेरे बारे में सोचते हैं कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल, या आई बिलीव कि आप सोचते हैं कि शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी, सो आई स्टार्ट फीलिंग यू लाइक हर मोर देन मी. एंड ये मेरे लिए बहुत डैमेजिंग हो जाता है, क्योंकि मैंने सारा कुछ इस बिलीफ पर बेस कर दिया कि फिजिकल लुक्स एक्सेप्टेंस लाते हैं, फिजिकल लुक्स पे मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है, और लोगों की अप्रिसिएशन मेरी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है. अब क्या होता होगा मे बी कि जहां भी मदर एंड डॉटर इकट्ठे जाते हैं, इफ शी फील्स कि फिजिकली मदर उससे ज्यादा सुंदर है, शी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग कि मदर को ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है. और जहां ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता, तो शी मस्ट हैव फेल्ट कि ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब ये समझने की बात होगी कि इट्स नॉट एक्चुअली फिजिकल ब्यूटी. किसी को भी आप सिर्फ एक दो मिनट के लिए फिजिकल ब्यूटी पर आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कि लोगों की हमारे प्रति एक्सेप्टेंस या हमारे तरफ अट्रैक्ट होने की जो बात आती, इट्स मोर ऑन माय एनर्जी लेवल. So, and in your mother, I mean, you can never compete with a mother.
1: No, but then I can understand. Yeah. She's Yana from Rajasthan, and yeah. she is so hurt. Matlab, aap anger or hurt se juda hua ki she was my best friend. Mm. My mother was my best friend, and now I don't even want to talk to her.
0: हाँ, लेकिन इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये प्रॉब्लम तो खुद अपनी क्रिएट की हुई है. And one thought. And वो फिनिश हो जाएगी.
1: ज्यादा टीनेजर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही
0: है, कहीं
1: ना कहीं,
0: क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत लो है इस टाइम. और सेल्फ एस्टीम सारा फिजिकल पर बहुत ज्यादा आधारित है. एंड सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंडेंट है कि कितने लोग
1: मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे अटेंशन कितना दे रहे हैं. मैं जहां जाती हूँ मुझे देखते हैं.
0: सेल्फ इतना वैक्यूम में है कि मुझे औरों की अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, मेरी सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे औरों से अटेंशन नहीं चाहिए. और दूसरी बात, दूसरे लोग भी अगर आपको चाहिए एक्सेप्टेंस, देन इट्स नॉट फिजिकल ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट. अपने इनर सेल्फ पर काम करना शुरू करें. मे बी इट्स पॉसिबल दैट फिजिकली तो आपकी मदर अट्रैक्टिव है ही है, लेकिन इट्स ऑल्सो दैट शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, है ना. तो शी सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, तो उनके अंदर से वो पॉजिटिविटी जो रेडिएट होती है उसके प्रति लोगों का आकर्षण होता. और इसको देख देख के मैंने अपने अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, वो नेगेटिव ऑरा मेरे अराउंड है, उसकी वजह से लोग मेरे से
1: दूर होते जाएंगे
0: और भी दूर हो जाएंगे. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वॉक इन करता, यू कैन फील द एनर्जी. आप फील कर सकते हैं कि कितना फियर है, कितनी इनसिक्योरिटी है. तो नथिंग अबाउट द फिजिकल लुक, लेकिन लोग वैसे ही दूर हो जाएंगे. बिकॉज आई एम कैरिंग अ वेरी नेगेटिव ऑरा, तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल लुक्स. वो आधारित है कि हमारा ऑरा क्या है. जैसे ही हम किसी भी कमरे में प्रवेश करते, हमारे साथ साथ हमारी एनर्जी फील्ड एंटर करती है. एंड वो एनर्जी फील्ड डिसाइड करती है कि और लोग मेरी एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं या मुझसे दूर होना चाहते हैं. तो उस पर वर्क करें. एंड यू विल हैव एवरीवन विद यू.
1: एंड समवेयर आई थिंक शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर मदर एज वेल, यू नो.
0: मदर इज ऑलरेडी अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन इंटरनली ऑल्सो. इट्स अंडरस्टैंडेबल. एंड शी शुड अंडरस्टैंड दैट शी शुड लाइक द आइडिया दैट हर मदर इज सो ब्यूटिफुल.
1: सो इट्स लाइक
0: एक थॉट है कि यू नो इनसिक्योरिटी किस बात की. कुछ भी नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि उनको जब वो दोनों इकट्ठे होंगे
1: और कितना बिल्डअप कर लेते हैं. इतना हर्ट में रह के, इतना हर्ट में रह के कंटिन्यूअसली, यानी आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुख दे रही हैं कहीं ना.
0: और ये आज आप अपनी मदर के साथ एक्सपीरियंस करें, कल आप औरों के साथ भी करेंगे. तो इसको अगर बिलीफ
1: को
0: यहाँ ही ठीक कर दिया, तो ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होगी और रिलेशनशिप्स में. और अगर मेरा मदर डॉटर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, तो मैं अपने आगे की रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग नहीं बना सकूंगी. मेरे हर रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक हीनता की भावना, एक भय और एक इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी. मुझे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनसे डर है, उनसे खतरा है, तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी. और ये मेरी अपनी प्रॉब्लम होगी. आई हैव टू रिमेम्बर ये औरों की वजह से नहीं है.
1: जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी. आप आज बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत करके हमें लिखा है. इट्स अ बिग स्टेप. अगला स्टेप ये है कि आप जिम्मेदारी उठाइए, आप अपने जिस भी जो भी आप फील कर रही हैं. और फिर एक थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे.
0: इस केस में तो वो रियलाइज भी कर रही होंगी कि मदर की कोई गलती तो है ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट उनको ये लग रहा होगा मुझे ऐसे थॉट्स आए क्यों रही हैं. तो कुछ नहीं, स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट और अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दे, वो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दे और अपने आप.
1: एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज यू आर दैट ब्यूटीफुल सोल एक्चुअली. असल शिवानी, एक और सवाल है जो बहुत से दर्शकों का सवाल से जुड़ता है. और ये है, विदेश शर्मा जी हैं, ये इन्होंने हैदराबाद से लिखा है. ही इज अ रिटायर्ड जज एंड ही सेज आई हैव गॉट टू सन्स. बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बच्चे हैं दोनों, एक अमेरिका में है और एक बैंगलोर में है. मैं और मेरी वाइफ एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन अब मैं 65 के करीब हूँ, ज्यादा हूँ. मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मेरा मन ये करता है कि बाकी लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगता है. पर मैंने अपने हिसाब से ही बच्चों को कभी भी बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आने दिया था. जब वो छोटे थे तब मैं इतना बिजी था अपने प्रोफेशन में, और वाइफ के साथ जो था वो भी एक दूरी बनी रही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहा। अब इतनी लोनलीनेस में फील करता हूँ, ना बच्चों के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, ना वाइफ के साथ रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनको, और वाइफ ने अपना सर्कल बना रखा है। मेरे पास ना मैं कह पाता हूँ अपने बच्चों से कि मैं लोनली हूँ, क्योंकि मुझे अब प्रोग्राम भी देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैंने भी उन्हें लोनलीनेस कहीं दी है, और ना मैं वाइफ के साथ जो है अपना रिलेशनशिप दोबारा, मतलब मुझे पता ही नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करूँ मैं, एंड देयर इज दिस लोनलीनेस व्हिच इज सीपिंग इन, सो आई वांट टू शेयर इट विद यू।
0: ट्रू। नाउ ये बहुत अच्छा है कि ये एक रियलाइजेशन आ गई है, और कहीं ना कहीं और भी एक बात जो बहुत अच्छी है वो है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसकी, यू नो, ये एक फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया।
1: आई थिंक ही सेड बिकॉज़ ऑफ द यू नो प्रोग्राम आई हैव बीन सीइंग, आई एम रियलाइजिंग दैट
0: बिकॉज़ यू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला स्टेप होता है, क्योंकि इसी सीढ़ी पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हमारा दृष्टिकोण नहीं तो सिर्फ औरों की तरफ होता। तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया था। अब ये भी समझना होगा कि ये एकदम से एक दिन में दूसरे नहीं चेंज होंगे। हाँ, मैं चेंज हो सकता हूँ, लेकिन औरों को और लोग भी, क्योंकि है तो फैमिली, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये तो बहुत नजदीक के संबंध है। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते होंगे। इट्स जस्ट दैट उनको तो इसी व्यवहार की आदत पड़ी है ना बहुत समय से।
1: अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चला कि आप बदल गए, ये ना हमने कहा था एक बार पहले।
0: क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में तो पुराना वाला पास्ट एक्सपीरियंस से चल रहा है, क्योंकि लेबलिंग ये होता है वो ब्लॉकर बिलीफ, यू नो, जो हमने सोच देखा था कि किसी को भी हम एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसे है। हाँ। अब क्या होगा, वाइफ बच्चे सभी एक साइड पर, जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि ये हमारे फादर ये तो है ही ऐसे। नाउ इट विल नीड टाइम फॉर देम फॉर दैट बिलीफ सिस्टम टू चेंज। तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए मुझे ही वो एनर्जी भेजनी पड़ेगी। अगर तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बहुत समय से एक ऐसी पर्सनल कॉन्वर्सेशन शायद की नहीं, तो बहुत इजी नहीं होगा बताना कि यू नो आई एम रियलाइजिंग, क्योंकि इजिएस्ट वे तो अदरवाइज ये है जस्ट गो एंड शेयर आई हैव रियलाइज्ड, लेकिन हमारे ईगो हमें ये सब करने से रोक देती है। सिंपल, बहुत सिंपल होगा अगर यू कैन वॉक अप टू ऑल थ्री एंड टेल देम आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने अपनी पूरी जीवन क्या किया है, बट नाउ I have realized and so I have changed. You know, not even wanting. I have changed. And कुछ उसके बाद बोलना नहीं है कि मुझे ये करना है या मुझे वो relationship build होना है। वो एक barrier है जो मैंने ही रखा था बीच में, अब मुझे जाकर सिर्फ उस barrier को हटाना है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो वैसे ही ready थे, तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो या तो मैं एनर्जी से उस बैरियर को हटाऊं, और अगर मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी है तो अगर मैं सीधा वो मैसेज कन्वे कर देता हूं तो वो बैरियर एक क्षण में फिनिश हो जाएगा। एंड इतना ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप होता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ हमने पकड़ के रखा है कि हम दूर हैं, हम दूर हैं। दूर मतलब क्या? रिलेशनशिप है क्या? एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, बहुत समय से हमने एक्सचेंज किया ही नहीं, हम अलग अलग होके बैठे थे, बीच में एक वॉल था, आज वो वॉल हट गया, क्या होगा? एनर्जी फ्लो बिगिंस, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट, इसमें कोई पुरुषार्थ तो इनको करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट बिगिन। एंड अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत समय से कम्युनिकेट नहीं किया, अगेन बिगिन,
1: स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। एक्चुअली अगर आप ये नहीं भी कहना चाहते कि जैसे आपने कहा कि ईगो आ जाती है कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने जिंदगी भर क्या किया, तो आई थिंक एक बार कॉन्वर्जेशन कहीं पर भी
0: मैसेज कन्वे कर देंगे ना। हाँ। अपने थॉट पैटर्न और अपने बिहेवियर से हम वो मैसेज कन्वे कर देंगे, और एक्चुअली जैसे ही आपकी थॉट चेंज होती है सामने वाले को वो वाइब मिल जाता है।
1: इतना इजी होता है, इट्स जस्ट वन थॉट एक्चुअल। इन्होंने कितना बड़ा हमने बनाए हुए होती है वो चीज कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
0: उनको वो वाइब मिल जाएगा। एंड इमेजिन दे आर तो एनीवेज वेटिंग, वो तो वेट कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा इस बात को लेकर और शायद कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है।
1: बिल्कुल। एंड मे बी यू नो कहीं इनको ये भी हो सकता है, इनको ये एक रिजेक्शन का डर भी लग रहा हो शायद कहीं, कि क्योंकि मैंने जिंदगी भर नहीं किया है
0: वही इनसिक्योरिटी है। लेकिन यही याद रखना होगा कि जब हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे देयर इज नो वे कि हमें रिटर्न में नेगेटिव मिलेगा। हो सकता है थोड़ा एप्रिहेंशन हो, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा एप्रिहेंशन हो तो भी आई हैव टू जस्ट कीप
1: giving.
0: Giving.
1: Because
0: and
1: now the time
0: mein
1: has come.
0: Haan, positive energy deta jao, the other person is ready.
1: Wonderful, Sister Shivani. In fact, ये जो इतने सारे हमारे पास mails आए हैं, आज भी हमने कई सारी समस्याएं ली. एक बात हम क्योंकि वक्त नहीं है, बात खत्म करें कि ये जो पूरा राजयोग का ये जो पूरी हमारी जो ये जो ज्ञान है, तो उसमें हर सवाल आप तक नहीं पहुंच सकता या हम पूरा नहीं इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते. क्या ऐसा किया जाए कि अपने सवालों के जवाब हमें खुद भी मिलने शुरू करें?
0: अपने सभी सवालों के जवाब हमारे पास अपने पास ही है, क्योंकि उसकी जो बॉटम लाइन प्रॉब्लम है वो हमें पता होती है. लेकिन कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करना पड़ेगा. और उसमें सिंपल सिर्फ यही है, जब तक औरों को ब्लेम कर रहे थे तब वो बिल्कुल दिखेगा नहीं. जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा कि एकदम से मुझे जड़ से पता चल जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है. लेकिन हर सिचुएशन में, एंड दैट मीन्स एवरी सिचुएशन, लेट इट बी एनी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन, इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या इसमें वेयर डिड आई गो रॉन्ग, नॉट यू वेंट रॉन्ग. जैसे यू वेंट रॉन्ग, फोकस इज चेंज. तो फोकस इतना इंटरनलाइज होता जाएगा, इसी को बोलते हैं लुकिंग इनवर्ड्स. जो आज दिन तक हम सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी मीन्स लुक इनवर्ड्स, तो लुक इनवर्ड्स इज नॉट के क्या देखूं, लेकिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें और अपना रोल देखना शुरू करें, अपना पर्सपेक्टिव देखना शुरू करें और कहां मेरे पर्सपेक्टिव में परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा.
1: बहुत सुंदर आपने बात की सिस्टर शिवानी, और यही वक्त है कि हम विराम लें. लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे कि इतना सारा जो प्यार हमें मिल रहा है और सवालों के जवाब हम खुद भी मिलकर तलाश सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: शांति.
1: जरूरत इसी बात की है कि खुद को पहचानने के बाद अब जब हम अवेयर हो गए हैं, जब हम समझ रहे हैं कि हमारी ये मुश्किल हो सकती है, फिर जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदारी हम खुद उठा लें. क्योंकि ये बात हमें रबिन करनी है कि कोई और नहीं बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी ना तो कोई दूसरा व्यक्ति बदलेगा. अगर हम अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो बदलना हमें खुद ही होगा. कहां बदलना है, कैसे बदलना है, क्या बदलना है, ये भी हम अपने इंट्रोस्पेक्शन में जाकर, अंदर जाकर अपने आप को पहचान कर कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई अभी भी ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई और सजेशन है प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999 3445, 9999 3446, 9873 666 555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा सफर है जिसमें हम लगातार चल रहे हैं. आप भी इस सफर का हिस्सा हैं, इस पूरे परिवार का हिस्सा हैं. तो आपको हम आमंत्रित करते हैं, ये सफर यूं ही चलता रहेगा. अब वक्त है कि थोड़ा सा विराम लें, लेकिन आने वाली कड़ियों में फिर मुलाकात करेंगे. दीजिए इजाजत. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 0999 993 4455 0999 993 4666 0987 3 666 555. हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के सभी कार्यक्रम अब BCDs पर भी उपलब्ध हैं. 10 BCDs के एक सेट की कीमत ₹300 है. अपने सेट का ऑर्डर भेजने के लिए आप ₹300 का डिमांड ड्राफ्ट या चेक ओम शांति सोसाइटी के नाम पर इस पते पर भेजें. ओम शांति सोसाइटी, 355 तरुण एनक्लेव, आउटर रिंग रोड, पीतमपुरा, दिल्ली 34. फोन 0987 3 666 555. आप अपना नाम, पता, फोन नंबर और किस वक्ता की बीसीडी ऑर्डर करना चाहते हैं ये लिखकर अवश्य भेजें. डिमांड ड्राफ्ट या चेक और आपके ऑर्डर से संबंधित बाकी जानकारी प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर आपको बीसीडी का सेट मिल जाएगा.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: अब के सावन महादेव की भक्ति में डूबने के लिए रेडियो माइंडट्री के साथ जुड़े रहिए।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: अच्छा। यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

रेडियो हांजी 1674 एम। दिस इज योर अपना आरजे पुनीत। समा हो चुका है आज दी कहानी, आज दे विचार दा, ते देखदे हां आज दी कहानी सानू की सिख्या देके जांदी है।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: रास्ता।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
4: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
5: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil coming on big screens on May 22nd. Chand.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310 डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au
2: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा
3: 5 साल बाद मुड़े हैं शेरे ते मुड़े भी केड़े हाथ च
4: स्टारिंग परमीश वर्मा सोनल चौहान योगराज सिंह मानव विज अते होर भी उगे कलाकार
5: मैं उठों भी मुड़ के
2: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
4: Hun vekhna na bhullyo. 15 Mai ton tuhade nedle cinema gharan vich. Sheera.
6: Phulkari utte bel bootiyan. Mitran de chadre te pa de mohri. Sat Sri Akal ji, main tuhada apna Gippi Garewal te tusi sun rahe ho. Haanji Radio.

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
3: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन, मसला तो मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
4: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
2: इस 8 मई नु सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
5: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 106।

0: इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ, 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: यार तू इतनी इतनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
4: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
5: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
6: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी
1: रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।